0: ये है रागम चौबीसों घंटे सातों दिन हिंदुस्तानी संगीत। हिंदुस्तानी संगीत के तहत आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम, और भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं श्यामा संगीत। लीजिए प्रस्तुत है अमियांशु मुखोपाध्याय का गाया श्यामा संगीत।
1: यू आर लिसनिंग टू श्यामा संगीत बाय आवर आर्टिस्ट तिमिर घोष। This is Ragam 24/7 on DTH, anytime Indian music. Concluding the program this evening, we present Shyama Sangeet by our artist Omiyangshu Mukherjee.

0: अभी आप भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम में श्यामा संगीत सुन रहे थे। कलाकार थे अमियांशु मुखोपाध्याय। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी संगीत।
1: यू वर लिसनिंग टू श्यामा संगीत। आवर आर्टिस्ट वॉज Amiyangshu Mukherjee. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH, anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन DTH पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग अहीर भैरव में ख्याल गायन. आज के कलाकार हैं मोहनलाल मिश्र. आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं समीर नंदी और हारमोनियम पर साथ दे रहे हैं रथींद्रनाथ चक्रवर्ती. तो आइए सुनते हैं राग अहीर भैरव में ख्याल गायन, कलाकार मोहनलाल मिश्र.
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. दिस मॉर्निंग वी फर्स्ट प्रेजेंट अ हिंदुस्तानी वोकल रेंडिशन. लिसन टू अ ख्याल इन राग अहीर भैरव. आवर आर्टिस्ट दिस मॉर्निंग मोहनलाल मिश्र. Accompanying on the tabla, Samir Nandi, and on the harmonium, Rathindranath Chakraborty. Now, listen to a khayal.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग अहीर भैरव में ख्याल गायन सुन रहे थे। कलाकार थे मोहनलाल मिश्र। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे समीर नंदी और हारमोनियम पर साथ दे रहे थे रथींद्रनाथ चक्रवर्ती। ये है रागम 24 घंटे सातों दिन डीटीएच पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम को जारी रखते हुए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं राग परमेश्वरी में गिटार वादन। आज के कलाकार हैं देवोतोष डे। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं तरुण रॉय। तो लीजिए प्रस्तुत है राग परमेश्वरी में गिटार वादन, कलाकार देवोतोष डे।
1: यू आर लिसनिंग टू ख्याल इन राग आहिर भैरव बाय योर आर्टिस्ट मोहनलाल मिश्रा। Accompanying on the tabla, Samir Nandi, and on the harmonium, Rathindranath Chakraborty. This is Ragam, 24/7 on DTH, anytime Indian music. Continuing the concert, we now present our guitar recital in Rag Parameshwari. Our next artist, Devotosh De. Accompanying on the tabla, Tarun Roy. Now, listen to a guitar recital in Rag Parameshwari by our artist, Devotosh De.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग परमेश्वरी में गिटार वादन सुन रहे थे। आज एक कलाकार थे देवतोष डे, आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे तरुण रॉय। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। रागम 24 घंटे सातों दिन डीटीएच पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: यू आर लिसनिंग टू अ गिटार रिसाइटल इन राग परमेश्वरी बाय आवर आर्टिस्ट देवतोष दे, एकम्पानिंग ऑन द तबला तरुण रॉय। दिस प्रोग्राम वॉज रिकॉर्डेड एंड प्रोड्यूस्ड इन द स्टूडियोज ऑफ ऑल इंडिया रेडियो कोलकाता फॉर रागम 24/7 एनी टाइम इंडियन म्यूजिक।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओं नमस्कार, आपने ट्यून किया है रेडियो चैनल रागम 2400 घंटे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।

सभी का कार्यक्रम में हम हार्दिक स्वागत करते हैं। सुनते हैं मिश्रवाद्य संगीत। मिश्रवाद्य संगीत के इस कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं पंडित राम नारायण के सारंगी वादन से। आपने प्रस्तुत किया है राग मारुबिहाग, विलंबित और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है। सुनते हैं पंडित राम नारायण का सारंगी पर बजाया हुआ राग मारुबिहाग।

श्रोताओ, हम सुन रहे थे पंडित राम नारायण का सारंगी वादन, राग था मारू बिहाग। मिश्रवाद्य संगीत का यह कार्यक्रम जारी रखते हुए आइए अब सुनते हैं पंडित उल्लास बापट का संवादन राग रागेश्री। विलंबित गत जप ताल में निबद्ध है और द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है। सुनते हैं पंडित उल्लास बापट का संतुर वादन राग रागेश्री।

श्रोताओं, हम सुन रहे थे पंडित उल्लास बापट का संतूर पर बजाया हुआ राग रागेश्वरी। ये आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मित थी। रागम 24/7 चैनल पर भारतीय संगीत हर पल हर समय आपके साथ।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है। प्रस्तुत है सुनीरा कासलीवाल का सितार पर बजाया राग नट भैरव में आलाप जोड़ और झाला। विलंबित और द्रुतगत तीन तालमनीबद्ध है। तबले पर आपकी संगति की है हसीन अहमद खान ने।
2: दिस इज द रागम चैनल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। वी नाउ प्रेजेंट अ सितार रिसाइटल बाय सुनीरा कासलीवाल। शी इज अकंपनीड ऑन द तबला बाय हसीन अहमद खान। यू विल फर्स्ट लिसन टू राग नट भैरव, in which you will hear alap, jod and jhala, followed by vilambit and drutgat set to teen tal.

0: अभी आप सुन रहे थे सुनीरा कासलीवाल का सितार पर बजाया राग नट भैरव। तबले पर आपकी संगति की थी हसन अहमद खान ने। और लीजिए अब सुनिए राग शुद्ध सारंग में आलाप। विलंबित और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है। तबले पर आपकी संगति की है हसीन अहमद खान ने।
1: यू जस्ट हर्ड राग नट भैरव सुनीरा कासलीवाल। नेक्स्ट प्रेजेंट्स राग शुद्ध सारंग इन विच यू विल हियर द आलाप फॉलोड बाय विलंबित एंड द्रुतगत सेट टू तीन ताल।

0: सितार पर बजाया राग शुद्ध सारंग। तबले पर आपकी संगति की थी हसीन अहमद खान ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: विद राग शुद्ध सारंग वी कम टू द एंड ऑफ द सितार रिसाइटल प्रेजेंटेड बाय सुनीरा कसलीवाल। शी वॉज अकम्पनीड ऑन द तबला बाय हसीन अहमद खान। दिस प्रोग्राम वॉज अ प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

मैं भी।

0: कर्नाटक शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में मेरी वरू श्री वोलेटि वेंकटेश्वर गात्रक चेरी विन्नारु वाद्य सहकारं वायलिन पै श्री बीएस नारायणन मृदंगं पै श्री वीवी सुब्बराम शास्त्री कार्यक्रमं आकाशवाणी हैदराबाद केंद्र समर्पण मीरु विंटुन्नारु भारतीय शास्त्रीय संगीतान्नी डीटीएच पै निरंतरं मीकु अंदिंचे चानल रागम
1: यू आर लिसनिंग टू A Carnatic classical vocal recital by Shri Voleti Venkateshwarlu. He was accompanied on violin by Shri B.S. Narayanan and on mridangam by Shri V.V. Subbarama Shastri. This program was contributed by
0: Akashavani Hyderabad
1: for Ragam 24/7 DTH, Anytime Indian Music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओं नमस्कार, आपने ट्यून किया है रेडियो चैनल रागम 2400 घंटे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. सभी का कार्यक्रम में हम हार्दिक स्वागत करते हैं. सुनते हैं मिश्रवाद्य संगीत. मिश्रवाद्य संगीत के इस कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं सरोद वादन से. कलाकार है अबोली सुलाखे. अबोली सुलाखे सरोद पर प्रस्तुत कर रही है राग अहिर भैरव. आलाप, जोड़ तथा मध्यलय और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है. आपके साथ पेपर संगत कर रहे हैं गणेश तानवड़े. सुनते हैं अबोली सुलाखे का सरोद पर बजाया हुआ राग अहिर भैरव.

श्रोताओं, हम सुन रहे थे अबोली सुलाई का सरोद वादन, राग था अहिर भैरव। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे गणेश तानवड़े। शास्त्रीय वाद्य संगीत का ये कार्यक्रम जारी रखते हुए आइए अब सुनते हैं तार वादन, कलाकार है संध्या आपटे। संध्या आपटे सितार पर प्रस्तुत कर रही है राग मियां की तोड़ी, विलंबित और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है। आपके साथ तबले पर है प्रशांत पाठक। सुनते हैं संध्या आपटे का सितार पर बजाया हुआ राग मियां की तोड़ी।

श्रोताओं, हम सुन रहे थे संध्या प्रिया सितार वादन राग था मियां की तोड़ी। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे प्रशांत फाटक। ये आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मिति थी। रागम 24/7 चैनल पर भारतीय संगीत हर पल हर समय आपके साथ।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग मारू बिहाग में ख्याल गायन. आज के कलाकार हैं गोपा सन्याल. आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं प्रद्युत पाल और हारमोनियम पर साथ दे रहे हैं देवाशीष अधिकारी. तो आइए सुनते हैं राग मारू बिहाग में ख्याल गायन. कलाकार गोपा सान्याल.
2: दिस इज रागम 24/7 एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. दिस इवनिंग वी फर्स्ट प्रेजेंट अ हिंदुस्तानी वोकल रेंडिशन. Listen to a khayal in Rag Maru Bihag. Our artist this evening, Gopa Sanyal. Accompanying on the tabla, Pradyut Pal, and on the harmonium, Devashish Adhikari. Now, listen to a khayal in Rag Maru Bihag by Gopa Sanyal.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग मारू बिहाग में ख्याल गायन सुन रहे थे। आज की कलाकार थी गोपा सान्याल। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे प्रद्युत पाल और हारमोनियम पर साथ दे रहे हैं देवाशीष अधिकारी। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं राग जोग में ख्याल गायन। कलाकार सुरजीत चट्टोपाध्याय। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं देवाशीष चौधरी और हारमोनियम पर साथ दे रहे हैं अमिताभ भट्टाचार्य। तो आइए सुनते हैं राग जोग में ख्याल। कलाकार सुरजीत चट्टोपाध्याय।
1: You are listening to a khayal in Rag Maru Behag by Gopa Sanyal, accompanying on the tabla Pradyut Pal and on the harmonium Devashish Adhikari. This is Ragam 24/7 anytime Indian music. Continuing the concert, we now present a khayal in Rag Jog. Our next artist, Surajit Chatterjee, accompanying on the tabla Devashish Chaudhary and on the harmonium Amitabha Bhattacharya. Now, listen to a khayal in Rag Jog by Surajit Chatterjee.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग जोग में ख्याल गायन सुन रहे थे। कलाकार थे सुरजीत चट्टोपाध्याय। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे देवाशीष चौधरी और हारमोनियम पर साथ दे रहे थे अमिताभ भट्टाचार्य। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। रागम 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: यू आर लिसनिंग टू ख्याल इन राग जोग बाय सुरजीत चैटर्जी, एकम्पानिंग ऑन द तबला देवाशीष चौधरी एंड ऑन द हारमोनियम अमिताभ भट्टाचार्य। दिस प्रोग्राम वॉज रिकॉर्डेड एंड प्रोड्यूस्ड इन द स्टूडियोज ऑफ ऑल इंडिया रेडियो कोलकाता फॉर रागम 24/7 एनी टाइम इंडियन म्यूजिक।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम, हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत. अब आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शैली में उपशास्त्रीय गायन. कलाकार हैं नैना देवी. आप सुनेंगे दादरा, बोल हैं गोरी बन के नैनो से चला जादुआ. संगत कलाकार हैं तबले पर इस्माइल दद्दू खां और सारंगी पर सरदार खां. ये रिकॉर्डिंग वर्ष 1980 में की गई थी. दिस इज रागम 24/7 एन एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल. नाउ लिसन टू हिंदुस्तानी लाइट क्लासिकल वोकल रिसाइटल बाय नैना देवी. द रेंडिशन कमेंसेस विद अ दादरा. द अकॉम्पनीमेंट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय इस्माइल दद्दू खां ऑन द तबला and Sardar Khan on the sarangi. This was recorded in the year 1980.

अगली प्रस्तुति है कजरी। बोल है धीरे धीरे से झुलाओ सुकुमारी सिया हो। द नेक्स्ट प्रेजेंटेशन इज कजरी।

अब आप सुनेंगे दादरा मिश्र गारा, बोल हैं सुध बिसरत नाही। नाउ लिसन टू अ दादरा मिश्र गारा।

आप सुन रहे हैं हिंदुस्तानी उपशास्त्रीय गायन, कलाकार हैं नीना देवी। यू आर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी लाइट क्लासिकल वोकल रिसाइटल बाय नीना देवी। ये है रागम हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे ठुमरी भैरवी।

अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी उपशास्त्रीय गायन, कलाकार थी नैना देवी, संगत कलाकार थे तबले पर इस्माइल दद्दू खां और सारंगी पर सरदार खां। हर पल हर समय रागम के लिए ये थी आकाशवाणी के भोपाल इंद्र की भेंट। यू विल लिसनिंग टू हिंदुस्तानी लाइट क्लासिकल वोकल रिसाइटल बाय नैना देवी। द अकॉम्पनीमेंट वॉज प्रोवाइडेड बाय इस्माइल दद्दू खां ऑन तबला एंड सरदार खां ऑन द सारंगी। This program was contributed by All India Radio Bhopal for Ragam 24/7, an exclusive Indian classical music channel.

Ni da ni da ba ba da ni da ni da da ni da da.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आज प्रस्तुत है तबला एकल वादन. वादक कलाकार है मुन्ने खां. सबसे पहले आप तीन ताल प्रस्तुत करेंगे. आपके साथ सारंगी पर लहरा दे रहे हैं जय शंकर.

अभी आप सुन रहे थे मुन्ने खां का बजाया तबले पर तीन ताल। आइए अब सुनते हैं इन्हीं का बजाया तबले पर एक ताल। आपके साथ सारंगी पर संगत कर रहे हैं जयशंकर।

ये है रागम 24 घंटे सातों दिन डीटीएच अनवरत भारतीय संगीत। अभी आप सुन रहे थे मुन्ने खां का बजाया तबले पर एक ताल। आइए अब सुनते हैं उस्ताद अली अकबर खां का बजाया सरोद पर राग चंद्र नंद। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं चतुर लाल। सबसे पहले आप आलाप जोड़ झाला प्रस्तुत करेंगे, तत्पश्चात विलंबित बंदिश जो कि तीन ताल में प्रस्तुत करेंगे।

ये है रागम 24 घंटे सातों दिन डीटीएच अनवरत भारतीय संगीत। अभी आप सुन रहे थे उस्ताद अली अकबर खां का बजाया सरोद पर राग चंद्र नंद। यह कार्यक्रम आप तक पहुंचा आकाशवाणी लखनऊ के सौजन्य से।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है सतीश प्रकाश कमर का शहनाई पर बजाया राग भैरव. विलंबित गत तीन ताल में और मध्य लयगत झप ताल में निबद्ध है. तबले पर आपकी संगति की है उस्ताद फैयाज खान ने.
2: दिस इज द रागम चैनल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो. वी नाउ प्रेजेंट अ शहनाई रिसाइटल बाय सतीश प्रकाश कमर इन राग भैरव. The Vilambit Gat is said to Teen Tal and Madhyale Gat is said to Jhap Tal. He is accompanied by Ustad Fayyaz Khan on Tabla.

0: अभी आप सतीश प्रकाश कमर का शहनाई पर बजाया राग भैरव सुन रही थी। और लीजिए अब सुनिए राग मदमात सारंग। मध्यलय और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है। तबले पर आपकी संगति की है उस्ताद फैयाज खाने।
1: यू आर लिसनिंग टू अ शहनाई रिसाइटल इन राग भैरव बाय सतीश प्रकाश कमर। नाउ लिसन टू राग मदमात सारंग। द मध्यलय गत एंड द्रुतगत इज सेट टू तीन ताल।

0: अभी आप सतीश प्रकाश कमर का शहनाई पर बजाया राग मधमाद सारंग सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी उस्ताद फैयाज खाने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: यू आर लिसनिंग टू अ शहनाई रिसाइटल इन राग मधमाद सारंग। ही वॉज अकम्पनीड बाय उस्ताद फैयाज खान ऑन तबला। दिस प्रोग्राम इज द प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

भीत गए आहिर भैरव राग कबीर दास भजन त्रिपुट तालम। नेक्स्ट आइटम इज भीत गए इन राग आहिर भैरव कंपोज्ड बाय कबीर दास सेट टू त्रिपुट ताला।

0: DTH इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल,
1: हर पल हर दिन भारतीय संगीत। यह है रागम DTH चैनल, प्रस्तुत है भक्ति संगीत। और आइए आप सुने एक भजन वाणी जयराम की आवाज में, मेरे तो गिरधर गोपाल।